वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: खबर जमा उठे पूरे कारण ने बिना करना बजाना खाना पीना करके नहीं कोई आवाज नहीं आई
1: आओ सब ने अरे तब तक तेरा नहीं सा आराम करने को क्या करने वाला है
0: मगाऊं निशा दीना पढ़ाने शक्ति कई बार मक्की में कुछ काम था